नानक गुरमुख मिलहे वडिया ज्ञान जे आपे मेल मिलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो

तिन कौ जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यो

भया भिखारी अच्छत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

जानी हर हर सफलो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सबला थी भूख पुखानी।

हर के संत जपहो हर जपना, हर संत चलाए हर नाली, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन।

आई किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप।

मंगल सुख सदहारे धनासरी महला पंजवां घर अठवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले ए लोक परलोक संग।

जुग मह धर्म जन कौ नाम बडाई सोभ नामो गात नामो पत जन की मान जो जो होग रहाऊ।

वाम मांगौ राम ते सब थोक मानुख कौ जाचत श्रम पाइये प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ कोखे मुन जन सिमरत।

कहत कबीर अवर नहीं करा, कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरा मन धन राम को नामा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पा।

बिन गुर मूड भय है मनमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहूं तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहो हर हर नाम उमाहाराम हर हर नाम दयाल त्याहा हर कै रंग सदा गुण गाहा हर हर हर जस

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाय है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

रहाव। दहदिस रव रहया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गाव है करते, से जन कबहु न मरते चूर। तंद बंध बिन से माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख सम

मान मिल संत जना जस गायो, मान मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गोर सत गोर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

कथां। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहाओ।

था नित निफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी संसार ना चेत हर नामा खिन मह बिन

ने हाथ फलगा, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा।

मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूर

निस्तरया। हर चरण ते आए सब फल पाए, मिटे आवन जान। पाए भगत सुभाए हर जप, अपने प्रभ पावा। जप एक अलख

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिन की कहन गत कही न जाई सच्चा आप सवारे परम पुलाने से मन मुख कही है ना उरवार ना पारे जिसनो

ज्यों हर पावै भगवाना। कहत नानक तू साचा साहिब, कौन जाने तेरे काम। एक ना करम है दे वड्याई, एक भरम भवै अभिमाना। बिलावल महला तीजा। पूरा

आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संगरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवां।

अपने प्रभ पहाया, मत कोई जान हो अवर काश, सब प्रभ कै हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

भांड हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद विधा पंच बटवारई उपजियो महाखेद नानक तिन

दृष्ट दृष्टाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अब महान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिया।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै अति

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीद नाम संग मनुआ गीद नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।

अब तृष्णा चूकी जप मुकंद सेवा ताहू की गोंड। जे ओ 68 तीर्थ नहावै

जोगी जुगत सहज कर वासै एक दृष्ट एको कर देखिया भीखिया पाए शब्द तृप्ता सह रहा।

तह हर हर हर रस भोगनी रहाव। सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचय जत कत पेख हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सदगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी।

मिलावा हुआ। चंद सूरज दोए जरे चरागा, चहो कुंत पीतर राखे। दस पाताओ पंच संगीता, एक है पीतर साथे। पिन पिन होए भाव दिखावे, सब हो निरारी पाखे। कर कर निरत हो

फलत फलत होहे दोहें सुहेले अचर्ज पुरख त्याओ रहा उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होव हमीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम इहो करम सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर

निंदा कर कर बहुत विगूता गर्भ जोन मह किरत पया पुरब कमाणे शोडह नाही जम दूत ग्रास्यो महा भया।

बिन नरक गया, खिनमह वेश करहै नटुआ ज्यों, मोह पाप महंगलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करहै बिकार विथार कन्हेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। हौ मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वह रोग गया, सुख संपत कौ आवत देखें, साकत मानं अभिमान पया।

कुटंब छोड़ पर पवन करह ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है।

आहा नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे,

कस कसवटी सह सोताओ नदर सराभ वन्नी चढ़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करणी कर पाई।

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए।

इहो भेत निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर

जाय पुछहो सिमृत शास्त्र व्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें ओए पहाड़े चलन अपने।

पौड़ी। मनमुख मोह गुबार है, दूजै भाए बोलै। दूजै भाए सदा दुख है, नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है, माथ तत कढ़ोलै। अंतर प्रगास

पौड़ी। जो तद पहाणा जंत सो तद बुझ, जो तद पहाणा जंत सो दरगह सिझ। जिसनों तेरी नदर हो मैं तिस गई, जिसनों तू संतुष्ट कल मल तिस खई।

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल इहे

हर हार हर उतारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चल्ली, सतगुर

जिह कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत ना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसारयो एक निमख नहीं।

नार पुरख नहीं जात ना जन्मा, ना को दुख सुख पाएंदा, ना तद जति सती बनवासी, ना तद सिद्ध साधक सुखवासी।

सुख दुख ही ते अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

निर्मल शब्द कुमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग

भावत हेत गुर शब्द तरंगा हर जस नाम पदार्थ मंगा हर पावे गुर मेल मिलाए हर तारे जगत सबाया जिन

यो भव जल जगत शब्द गुर तरियै अंतर की दुविधा अंतर जरियै पंच बाण ले जम कौ मारै गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाईऐ शब्द सुरत बिन आईऐ जाईऐ नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।

मूर्ख मन हाथी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों, पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों। गुर शब्द महारस पाया, कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब

तिस सब किछ सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई। गुरमुख

आइंदा गुरुमुख एक स्यों लिवलाए त्रिविध मनसा मन समाए साचा शब्द सदा है मुक्ता माया मोह चुकाइंदा जो तुर राते से हुन राते गुर प्रसादी सहजे माते सदगुरु

बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएंदा। काया विच तोटा काया विच लाहा।

आन दिन गुण रवह दिन राती, आन दिन गुण रवह दिन राती, रसना हर रस पाया, शब्द मरह से मरण सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागे, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मिले आप मिलाए, गुर कै शब्दे आप गवाए, आन दिन सदा

सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा। उठ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया शुद्ध है शब्द भी।

गुण निदान मन तन महि रविया, जन्म मरण की जोन ना पभया। दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

पाकखरा शराशरयत लेकम्मावहो त्रिकृत तर्क खोज टोलावहो मार्फत मन मारहो अब्दाला मिलहो हकीकत।

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।